जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़े हो कैलाश रे हो, जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़े हो कैलाश रे हो, जैसे कोट जन्म तप ऊर्ध्वमुखी बसंतर में तन दाहे दियो, जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग ठयो, हुन अमृत नाम विशेष इती

गुर सिखो गुर सिख है, गुर सिखो गुर सिख है, पीर पीरो कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई। दर्शन दृष्ट ध्यान तार गुर मूर।

वाहेगुरु गुरमंत्र है, जप हों मैं खोई। नमस्कार गुरुदेव को, सत नाम जिस मंत्र सुनाया, पव जल विच्चों कढ के मुक्त पदार्थ माए समाया, पव जल विच्चों

जन्म मरण विच दुख सबाया जम दंड सिरों ना उतरे साकत दुर्जन जन्म गवाया चरण गहे गुरुदेव के सत शब्द दे मुक्त कराया पाओ भगत गुरपुरब कर पाओ भगत गुरपुरब कर नाम दान इशनान दृढ़ाया उज्जे

सेवक के भरपूर जोग जोग वहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।

छा मत देओ, दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। छा मत देओ दयाल प्रभ, सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहुमान।

सकता है तो मेरा जीवन ही भ्रष्ट कर देता है। माया दे मगर लग के चल उसी सिख कोल चलिए। सिख दे चरनी हाथ लाया महाराज, जो मर्जी है ले ले पर वो बख्शिश सानू दे दे। सिख ने आख्या वही ए बख्शिशा नहीं मिलदियां, क्योंकि गुरु के सिख नू ऐसे रंग भाग लगे सन जदों हल वा रिया सी तां देग मोरां दी निकल आई, ते सोने महल माड़ियां बन गए, जमीना होर बन गईयां, रंग लगे हुए हन। इस पिंड दा कोई नक्शा ही बदल गया। ते भाई हर गोपाल ने जदों चरण पकड़े ता आख्या भाई मैं तेरी सिफारिश करदा हां गुरु के, पर ए बख्शिश नहीं मोड़ सकदी, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जां साहिब कलगीधर पातशाह जी दे चरणां विच आके मत्था टेकिया, भाई हर गोपाल ने नैणा दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते। गरीब नवाज मेरी मैनू दे दियो, जो बख्शिश मेरे ते कीती है मेरा लोक परलोक सवार दियो। ता गुरु ने आख्या भाई इथे ता ओही चोलियां पर के जांदा है जिवें हजूर ने कहा, तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय। इथे सियाणप नू तज के जेड़ा आया ओ चोलियां पर के जांदा। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम हो जाए। भाई हर गोपाल दियां भी गुरु ने चोलियां पर दितियां। गुरु दे घर विच कोई घाटा नहीं भाई, असि श्वासा दा दसवंद भी माया दा दसवंद भी गुरु दे लेखे लाउणा, क्योंकि हजूर एक गल कह रहे हैं।

मैं अपने सह अपने परमेश्वर उस अकाल पुरख का दीवाना हाँ हों हर बिन अवर न जाना। मैं हरी तो बगैर होर किसे नु भी जानदा नहीं, होर किसे अगे मैं झुकदा नहीं, ते दीवाना भी मैं उसे हरी दा हाँ। पर एक गल कही तो दीवाना जानी जां पै दीवाना होए, असी ते उन्नु दीवाना आखदे हां जेड़ा रब दे डर विच रब दा मन विच डर रखे, रब दे पै विच जेड़ा रहिंदा है वह दीवाना है। अते नाल के है जेड़ा एकाकार कमाए एक परमेश्वर दे हुक्म विच रवे, परमेश्वर दुख देवे पावे सुख देवे, जेड़ा उस परमेश्वर दी बंदगी करदा है, साहब जी कहंदे हन असल विच ओ दीवाना है। ते नाले के है हुक्म पछाणे खसम का, खसम उस अल्लाह वाहिगुरु राम नू के है कि जेड़ा अपने खसम दा परमेश्वर दा हुक्म पछाणदा है, हुक्म मनदा है, अपनी सियानप नहीं वरतदा, असल विच ओ परमेश्वर दा दीवाना है। ते नाल ए भी कहा तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्या, ओ दीवाना है जेड़ा अपने मालक नाल प्यार करदा है, मंदा जाने आप को आवर पला संसार, जेड़ा अपने आप नू मंदा समझे संसार नू चंगा समझे, असल विच ओ दीवाना है। अक्सर देखते हैं लोग आप ते औगणा दे परे हैं, अपने औगण लुकाउंदे हैं ते दूसरियां दी बुराई करते हैं, पर सतगुरु जी कहिंदे हैं अपनियां बुराइयां दुनिया तू लुको सकदा है पर परमेश्वर तू नहीं, उस वाहेगुरु अल्लाह तू नहीं, क्योंकि ओ सब कुछ जानता है। धन गुरु नानक साहब जिन्हें कदी किसी नु माड़ा नहीं किया। एक नगर विच गए, उस नगर दे लोका ने धन गुरु नानक साहब नु आदर नहीं दिता, सगा पत्थर मारे, ते धन गुरु नानक साहब कहन लगे उन्हां लोकां वल देख के वसदे रहो। फिर दूसरे नगर गए, उत्थे दे लोकां ने बड़ा आदर मान कीता, बड़ी सेवा कीती, ते धन गुरु नानक साहब ने कहा तुसी उजड़ जाओ। ता सेवक ने पूछया महाराज जिन्हां पत्थर मारे उन्हां नू कहा वसदे रहो, ते जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नू कहा उजड़ जाओ, ये क्यों कहा? धन गुरु नानक साहब कहन लगे भाई जिन्हां पत्थर मारे जिन्हां दे मन विच बुराई है, जेड़े नेकी नहीं करते, असा उन्हां नू कहा वसदे रहो इत्थे ही रहो, क्यों कि जे किधरे होर जावोगे उत्थे भी बुराई फैलावोगे, ते जिन्हां ने की कीती उन्हां नू इस वास्ते कहा उजड़ जाओ, भाव कि होर जगह जाके वसो, तुसी नेकियां करदे हो तां कि तुहाडे वल देख के दूसरे लोग भी नेकियां करन। पत्थर मारन वालियां नू बुरा नहीं कहा, सगा सतगुरां ने कहा ए लोग बुराई करते हैं, इन्हां दी मत इतनी है। ते जे धन गुरु नानक साहब नू पूछिए महाराज तुहानू लोग दीवाना कह रहे हैं, मस्ताना कह रहे हैं, ते साहब जी कहते हैं भाई सचमुच मैं दीवाना हाँ,

काज ना कछू है। हे निरंकार, ए जितना भी जल है ना धरती ते, ए मेरे किसे काम नहीं। जिन्हां दे हीए विच सिक है मालिक दे मिलन दी, ते कोई उन्हां नूं कह देवे भाई राज भाग दुनिया दे सुख प्राप्त कर लै, दर्शना दा ख्याल छड़ दे, ओ फिर सिर फेर देवेगा।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाता है एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार किसी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होनी

बेनती करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसे छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई तिहाईए जीअड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहन शाह तो वड्डा है। शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

परमेश्वर की जोत कह लो, वाहेगुरु का निवास कर लो। पर उदू हैरानगी होंदी है कि जब इंसान इंसानियत नूं भुल के एक दूसरे उत्ते जुलम करता है। ताकत मिले ते ताकत नूं भले पासे लाना चाहिदा है। इंसान नूं इंसान दा घर नहीं साड़ना चाहिदा। इंसान नूं इंसान प्यार करे

0: दुर्लभ है।
1: ये बार बार प्राप्त नहीं होना। जिसनू तू एवी जान ले,
0: कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार।

चार एक अवसर मिले कहने नहीं अवसर आया हाथ गवा दिता बार बार नहीं मिलने इस जन्म अंदर ही प्रभु दी नाल तेरा मिलाप हो सकता है। कबीर साहब का ख्याल बड़ा सुंदर है। कबीर साहब कहते हैं कि जीव नू कि जीव नाम जप सिमरन कर इस जन्म नू सफला कर ले लेकिन मनुख अनमोड़ है नहीं जाने लेकिन कहते नहीं एक दिन अवस्था

कई है कभी से मित के कि बल्द बड़ा सुंदर है लेकिन इतनी मार पैण दे बावजूद भी कम नहीं करता है कौन कहते ने नीज पा के तके वेख्या आख्या ते ओही भुलिया जीव है जिन्हों असी उपदेश करते सा कि नाम जप ते मनुखी जामा सफला होवे लेकिन फिर किसे जूंड दे विच पैगे। कबीर साहब उहदे नाल गल्लां करदे ने कहिंदे ने देख जीव कितना सुंदर तू लगदा सै लेकिन अज तेरी हालत कैसी चार पाओ दो पाओ की जगह चार पाओ लग गए ने दोए सिंह गुंग मुख मुखो गुंगा हो गए हैं सिर ते दो सिंह लग गए ने तब कैसे गुण गई है हुण तू हरी वाहिगुरु दे गुण नहीं गायन कर सकदा हालत कैसी है उठत बैठत ठेंगा पर है अब कत मूंड लुकई है जीव हुण क्यों मूंह लुकाउना उठदियां बहिंदियां तेनू चोटां वज रही है कि ए एक जीवली उपदेश है नहीं साडे सारिआं लई जे जीव नाम नहीं जपेगा इसे तरह तेनू भी चोटां ही पैणगियां।

0: शुद्ध
1: जन्म मिले है ते कहिंदे नी आउंदी प्यार छाना दे दुध नाल लग गए ऐसा मोह प्यार पे है ए मोह प्यार दुनियावी कहिंदे नी वधदा चला गया कटिया नहीं प्रभु वलो प्यार टुट गया जन्म क्यों सफला होवे।

अब भल कहिंदी नहीं जन्म सफला क्यों नहीं होया क्यों किसने मूल नहीं जाने ते जिन्ना चिर मूल ना जाने उन्ना चिर जन्म दा पता नहीं लग सकदा कहिंदी नहीं अवस्था ऐसी आ गई लेकिन प्रभु वल ध्यान अजे नहीं लगया आ जी प्रभु वल अपना ध्यान ला जन्म पाए कच पालो नकीनो ताते अदक डरो।

मेरी मेरी कर दे हैं, जन्म चला गया। अवस्था इतनी बिरध हो गई, कहने अंत समा आ गया, ते अंत समा संगियां साथियां ने पुंडे पा दिता। आखिरी सवास ने कहने पुंडे पा दे, पुंडे पा के ना कोल जोत जगा दी। पंडित जी आ गए, मुंह च अमृत जल पाउन लग पाए, ते कहने ए आखिरी समय ते आया इंसान। हिम्मत करके कहिंदा है, मेरा पुत्र किथे? घर वाली आख्या, महाराज तुहाडे पास सजी हथ बैठे। कहिंदे ने कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई, दूसरा पुत्र किथे? आख्या जी तुहाडे खब्बे हथ बैठे। कुछ समा फिर बीते, कहिंदे ने आखरी आख्या, मेरा तीसरा पुत्र किथे? आख्या जी वी तुहाडे चरणा विच बैठे। कहिंदे ने इतनियां गल्लां करदे इस ते मुंह आवाज निकली, जे सारे पुत्र मेरे कोल बैठे ने ते दुकान ते कौन गए? कहन तो पास अंत समा भी आया, लेकिन ध्यान प्रभु वाल नहीं गया, दुकान वाल चला गया। साहब कहिंदे ने ऐसे जन्म का की लाभ है? गुरु अमरदास पातशाह बिरध अवस्था है। ए शरीरा मेरे आ, इस जग में आए कहीं